भर्जनम भवीजानाम अर्जनम दुग्धम पदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम श्री सीताराम नाम महाराज की जय। संत बड़े परमार्थे भेष धरे अवधूत राम नाम के गर्जना भाग जाए यमदूत श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री राम लला भगवान की जय।

श्री गोविंद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। श्री भगवान अपने अति जिज्ञासु भक्त को आध्यात्म कर्म अधिदेव अधिभूत व अधियज्ञ के बारे में समझाते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि जीवन प्रयाण के समय मनुष्य का जैसा भाव होता है उसे वैसी ही गति मिलती है। अतः इस दुख आलय नश्वर जग से मुक्ति पाने के लिए मानव को सदैव मेरा स्मरण करते रहना चाहिए।

श्री कृष्ण इस सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा की दिवस एवं रात्रि के आधार पर कल्प की आयु को स्पष्ट करते हुए दक्षिणायन उत्तरायण शुक्ल एवं कृष्ण पक्षों पर आधारित जग प्रयाण के पथक मार्गों का वर्णन करते हैं। वे कहते

श्रद्धालु प्रभु भक्तों, महाभारत पुराण के भीष्म पर्व का यह उत्कृष्ट भाग श्रीमद् भगवद गीता आध्यात्मिक ज्ञान का अथाह सागर है। यह शाश्वत संदेश वर्तमान समय में भी विश्व में प्रचलित सभी धार्मिक मान्यताओं का मूल आधार है। गीता में मुख्यतः परमपिता परमेश्वर की सर्वोच्च सत्ता के अधीन संपूर्ण सृष्टि, समस्त जीवात्माओं तथा भौतिक देह की वास्तविक स्थिति का सुंदर चित्रण किया गया है। हरेक जीवात्मा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति का परम लक्ष्य निर्धारित करते हुए गीताकार ने इस हेतु कर्म, ज्ञान, ध्यान एवं भक्ति रूपी चार प्रमुख मार्गों का सहज शब्दों में निरूपण किया है। गीता में विभिन्न स्थानों पर प्रत्येक मार्ग की श्रेष्ठता को भी प्रतिपादित किया गया है, परंतु ऐसा साधक को भ्रमित करने के लिए नहीं, अपितु परमात्मा के विस्तृत स्वरूप के अनुसार इस ग्रंथ को व्यापकता प्रदान करने के लिए किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का निरंतर अध्ययन व चिंतन करने के पश्चात ये सभी मार्ग एक समान तथा एक दूसरे के पूरक ही प्रतीत होते हैं। भगवत प्राप्ति के इन सभी मार्गों की पराकाष्ठा है अनन्य भक्ति व अंततः शरणागति। श्री मद्भागवत पुराण के अनुसार श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, अर्थात प्रभु के नाम का संकीर्तन, श्रवण व स्मरण, प्रभु के समग्र स्वरूप की अर्चना, वंदना तथा चरण सेवा करना एवं प्रभु की दासता, मित्रता व शरण को स्वीकार करना ही भक्ति के विभिन्न स्वरूप हैं। श्री मद्भगवद गीता रूपी इस गुह्यतम ज्ञान सागर के अगले अध्यायों के श्रवण से पहले आइए इस सनातन संदेश के उद्घोषक भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रेम भाव के साथ संकीर्तन करें।

बाल कृष्ण की प्रीत में तन्मय हर गोपी दिन रात कान्हा के ही सपने देखती है। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया ग्वाल बाल संग गोकुल में गैया चराते, बंसी बजाते, माखन चुराते और गोपियों संग रास रचाते हुए मनमोहक लीलाएं करता है। यमुना किनारे सांझ सकारे जब गोपाल मुरली की मधुर मधुर धुन छेड़ता है, तब गोपियां सुध-बुध खो बैठती हैं। कृष्ण भक्त गोपी राधा नंदलाल से प्रीत तो कर बैठी, मगर उसे चिंता सताती कि कहां त्रिभुवन का स्वामी सर्वव्यापी नारायण और कहां वो ब्रज की एक साधारण सी गोपी। वो ध्यान में मग्न बंसी बजैया से पूछती रहती, हे गोविंद बांके बिहारी तू ही बता कैसे निभेगी प्रीत हमारी।

जटायु से रावण द्वारा सीता हरण की जानकारी मिलने पर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी दोनों भाइयों को सुग्रीव, जामवंत और समस्त वानरी सेना से मिलवाते हैं। श्री राम अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। श्री राम की शरण में आए हुए सुग्रीव अपनी वानरी सेना को माता सीता की खोज के आदेश देते हैं, परंतु सागर को लांघकर लंका जाना ये कार्य तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। जामवंत, अंगद और वानरी सेना हनुमान जी को जागृत करते हैं।

0: ये पानी है। जीवन के लिए तीन अनिवार्य आवश्यकताओं, हवा, पानी और अन्न में से एक।
1: नदियाँ पानी ढोती हैं और साथ ही साथ बाकी तीन जरूरतें भी पूरी करती हैं।
0: नदियाँ हवा शुद्ध करती हैं और अन्न पैदा करने में सहायक होती हैं।
1: इसीलिए हमारे देश में नदियों को जीवनदायिनी माँ के रूप में देखा गया है।
0: गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी से लेकर सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी तक सभी को पूजा गया है।
1: इन्हीं में से एक है बेतवा,
0: कलयुग की गंगा बेतवा,
1: परम पावन बेतवा।

0: चलो उर्मी।
1: मेघदूत के इस 24वें श्लोक में कालिदास ने बेतवा के जल में प्रिया के अधरों के स्पर्श का सुख देखा था। तो इसी बेतवा को मार्कंडेय ने कुछ ऐसे कहा कि
2: जब सृष्टि विलीन होगी तो बेतवा बाल मुकुंद के उदर में समा जाएगी।
1: महाभारत के वन पर्व में तीर्थ यात्रा प्रकरण के 25वें अध्याय में भीष्म ने युधिष्ठिर को बेतवा के तुंगारण क्षेत्र का महत्व समझाया, जहां सारस्वत, अंगिरा, भृगु ऋषियों ने तपस्या की तथा लोक कल्याण के लिए अनेकों यज्ञ किए।
2: वामन पुराण में कार्तिकेय जब देव सेनापति का पद ग्रहण करते हैं तो बेतवा उन्हें श्वेतानंद प्रदान करती है।
1: वारह पुराण में बेतवा का अलग ही रंग है। इंद्र वरुण पुत्री प्रसंग में बेतवा मोहक मादक रूप में सामने आती है, तो पद्म पुराण में इसकी महिमा इन शब्दों में मंडित की गई है।

0: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में झिरी बहेड़ा नामक स्थान से निकली बेतवा अपने उद्गम पर बूंद बूंद रिश्ते जल स्रोत की तरह दिखती है।
1: यहाँ आसपास के चरवाहे तक को ये पता नहीं कि यह किसी नदी का उद्गम है या यहाँ से कोई नदी भी निकली है।
2: हमें तो कुछ पता नहीं, यहाँ कोई नदी वदी नहीं है।
1: और विचित्र है कि यहाँ से 16 किलोमीटर दूर भोजपुर है, जहाँ यही बेतवा बहती हुई कलकल करती हुई दिखती है, जिसे वही चरवाहा अच्छी तरह जानता है।
2: हाँ जी, भोजपुर तो अच्छे से जानते हैं, वहाँ बेतवा भी है।
0: भोजपुर, मध्य भारत का सोमनाथ। यहाँ 2.3 मीटर ऊंचा तथा 5.49 मीटर घेरे वाला विशालतम शिवलिंग है।
1: यही वो पहला पुण्य स्थल है जिसे बेतवा ने अपने उद्गम से 16 किलोमीटर दूर जाकर सौंपा है।
0: विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पारियात पर्वत क्षेत्र जहां से बेतवा निकली है, वो स्थान समुद्र तट से 525 मीटर ऊंचाई पर है। पारियात पर्वत से निकलने के कारण बेतवा को पारियात पुत्री भी कहा गया है।
1: अलग अलग कारणों से इसके और भी कई नाम हैं।

0: जैसे इसके किनारे बहुत सारे बेंत होते थे, इसलिए बेंतों वाली कहा गया। पहले इसकी धारा का बहाव बहुत तेज था, वेगवान था, इसलिए वेगवती कहा गया। वही बिगड़ते बिगड़ते वेत्रवती और अब बेतवा हो गया।
1: पुराण कथाओं में वृत्तासुर नामक दैत्य का उल्लेख मिलता है। पुराणकारों के अनुसार उसी ने महागंभीरा कुआ खोदा जिसमें से बेतवा प्रवाहित हुई।
0: कितना विचित्र है कि जिस नदी को दैत्य ने प्रवाहित किया वो लगातार लोक मंगल करती रही है, अपने तट पर संतों कलाकारों को जन्माया है, जैसे ओरछा के तुंगारण्य क्षेत्र में तुंग ऋषि।

0: बेतवा के किनारे हमीरपुर जिले में जितकरी नामक स्थान है, जहां याज्ञवल्क ऋषि ने दर्शन शास्त्र तथा समाज शास्त्र की अनेकों अवधारणाएं रची।
1: बेतवा के ही तट पर चंडौत के च्यवन ऋषि ने अक्षुण यौवन तथा निरोग स्वास्थ्य का अमर रसायन च्यवन प्राश तैयार किया। इसी बेतवा के जल से उन्होंने कायाकल्प योग सिद्ध किया।
0: बेतवा के जल के औषधि गुण के बारे में जानकारी देते हुए ओरछा संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य श्री रामकृष्ण मिश्र।
2: यह बेतवती जम्बू वृक्षों से की जड़ों से स्पर्श करके प्रवाहित होने वाली नदी है। इसमें इसके किनारे अधिकांश जामुन के पेड़ पाए जाते हैं और यह जामुन के पेड़ से स्पर्श करके चलने वाला ये जो जल है, इस बेतवती में हवन की सामग्री में काम आने वाली औषधि जिसे गोंदरा कहते हैं, उस वह भी अधिकांश रूप में पाया जाता है। और ये दोनों वस्तुएं जम्बू मूल का रस और गोंदरा की जड़, ये दोनों मिलकर के एक सुंदर त्वचा को साफ करने वाली और मानसिकता पर प्रभाव करने वाली औषधि का काम करती है।
0: बेतवा के ही तट पर पाराशर में पाराशर ऋषि ने दीर्घकालीन साधना से मनुष्य के मोक्ष के साधन जुटाए। तो यहीं से थोड़ी दूर इंदल घाट में इतिहास प्रसिद्ध चंदेल परमाल युद्ध देखा।
3: आला चल रहा नाग दमन का जो पचली थे हो जा पार, टांगे चल रही है नागड़ की मचा भयंकर हाहाकार। ऐसी रणखेतों में हो रहे चारों ओर मार ही मार, ऐसी रणखेतों में हो रहे चारों ओर मार ही मार, जैसे अहरन पर घन

0: तुम्हारे दो मर जा तीसरो है दसा गिर जा।
1: बेतवा तट का एक और गौरव
2: बुंदेल केसरी महाराज छत्रसाल, जिनकी मुगल सेनापति सैयद गाजी से हुई युद्ध गाथा कोटरा की किंवदंती बन गई है।
1: इसी बेतवा के किनारे ओरछा में केशव ने हिंदी कविता को वो ऊंचाई दी जिसे सूर तुलसी के समकक्ष समझा गया।

0: सूर सुता शुभ संगम तुंग तरंग तरंगिनी गंग सोहे।
1: चंदेरी इसी बेतवा तट की शोभा है जहां बैजू बावरा ने संगीत को जीवन रस में तब्दील कर दिया था।
2: जानकारी देते हुए संस्कृति कला और साहित्यविद श्री राम भरोसे चौरसिया।
3: कला संस्कृति के बारे में तो यह था, वास्तव में चंदेरी संगीत सूर्य बैजू बावरा का ये नगर रहा है। विश्व प्रसिद्ध वो गायक थे और आपको मालूम है कि खड़ी प्रतियोगिता में उन्होंने डांसर को भी पराजित किया था, उनका यहाँ स्मारक है।
2: बेतवा ने खड़ी बोली को मैथिली शरण गुप्त जैसा राष्ट्रकवि दिया तो ईसुरी की फाग ने पूरे बेतवा क्षेत्र को रस रंग से भर दिया।

0: वेगवती पेत्रवंती पेत्वा। झिरी बहेड़ा से झिरकर जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती जाती है।
1: अनेकों नदी नाले बेतवा को अपनी जल राशि सौंप कर उसे समृद्ध करते हैं
0: और जल से समृद्ध हुई बेतवा आसपास के क्षेत्रों की पैदावार बढ़ाती हुई आगे ही आगे बढ़ती जाती है।
1: विस्तृत जानकारी देते हुए गंज बासोदा के जल संसाधन कार्यपालन यंत्री श्री राम सिंह दरबारी।
2: विदिशा में जो हलाली है जिसको आजकल सम्राट अशोक सागर परियोजना कहते हैं, ये बृहद परियोजना है और इससे बीसा जिले में 31,566 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई होती है। इसके साथ ही यहाँ पर दो मध्यम परियोजना भी हैं, एक कैथन परियोजना है जिससे 2500 हेक्टर सिंचाई हो रही है और ये कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी नरेंद्र परियोजना है, ये भी मध्यम योजना है, इससे इस समय 2500 हेक्टर सिंचाई हो रही है और इसका रूपांकन क्षेत्र जो है वो 2827 हेक्टर करीब। यहाँ पर जो है 27 से लघु सिंचाई योजना है और 4 उद्वहन सिंचाई योजना है और इन सब योजनाओं से 45,740 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है और जिले का निरा जो बोया हुआ क्षेत्रफल जो है 5,17,928 हेक्टर है और इस जिले का अभी सिंचाई प्रतिशत जो है 8.83% है। सिंचाई योजनाओं के बनने के बाद में यहाँ की जिले की बहुत ज्यादा प्रगति हुई है।
1: बेतवा पर कई छोटे बड़े बांध बनाए गए हैं जो सिंचाई के साथ साथ बिजली उत्पादन के काम भी कर रहे हैं।
0: पारीछा बांध 1885 में बना था। उत्तर प्रदेश के झांसी हमीरपुर तथा जालौन और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ तथा भिंड जिले इससे लाभान्वित होते हैं।
1: ढुकवा बांध 1909 में बना।
0: माता टीला बांध 1952 में बना।
1: इन बांधों के बारे में बताते हुए अधीक्षण अभियंता श्री बी एम पवार।
3: सन 1885 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारीछा जलाशय का निर्माण कर बेतवा नहर प्रणाली का शुभारंभ किया गया। पारीछा जलाशय की क्षमता में योगदान देने के लिए सन 1909 में ढुकवा बांध निर्मित किया गया। यह योजनाएं उत्तर प्रदेश के झांसी और जालौन जिलों में सिंचाई की सीमित आवश्यकता पूरी करती थी। पहली बार सुनियोजित सिंचाई के लिए सन 1958 में उत्तर प्रदेश शासन ने माता टीला बांध बनाकर एक बहुउद्देशी परियोजना प्रारंभ की। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में बेतवा नहर प्रणाली के विस्तार और गुरसराय नहर प्रणाली के निर्माण तथा मध्य प्रदेश में भांडेर नहर प्रणाली से सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि के अतिरिक्त जल विद्युत का उत्पादन भी प्रारंभ हुआ।

0: राजघाट वर्तमान समय का विज्ञान तीर्थ है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा पर बन रही ये परियोजना बेतवा का वरदान है।
1: राजघाट परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए चंदेरी के अधीक्षण अभियंता श्री जीपी बिथारिया।
2: ये राजघाट परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर एक राजघाट बांध का निर्माण हो रहा है, दोनों राज्यों के सहयोग से, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के। तो राज्य में जो नहरों का निर्माण है वो दोनों राज्य अपने अपने

0: स्रोतों से कर रहा है। इसमें जो नहरें निकलती हैं तो बांध के बाएं तट से एक नहर निकलती है, LBC नहर। इसकी लंबाई करीब 84 किलोमीटर है और नीचे एक ढुकवा बांध है, वहां से दतिया करियर कनाल निकलेगी DCC, जिसकी लंबाई 49.50 किलोमीटर है। तो ये जो अपना बाईं तट नहर है, इससे जो डायरेक्ट इरिगेशन होगा ये 18,433 हेक्टर का होगा, और ये अपने जो दतिया करियर कैनाल है इससे डायरेक्ट इरिगेशन तो कोई नहीं है। टीकमगढ़ में थोड़ा इरिगेशन है, 3,383 हेक्टर। बाकी इसका पानी जो है वो अंगूरी बैराज में डाला जाएगा। अंगूरी बैराज से पावर जनरेशन भी होगा करीब 6.5 मेगावाट, और फिर ये पानी दतिया इरिगेशन कैनाल में डाला जाएगा। तो ये दतिया इरिगेशन कैनाल है, इसकी लंबाई है करीब 31 किलोमीटर, और इससे जो इरिगेशन होगा वो 57,683 हेक्टर इरिगेशन होगा। ये होगा भिंड और दतिया जिले में। इसके साथ ही जो अपनी भांडेर नहर कैनाल है, इसका भी हम लोग मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, और ये करने के बाद 36,083 हेक्टर और इरिगेशन होगा भिंड और दतिया डिस्ट्रिक्ट में। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में कुल 1,16,000 हेक्टर इरिगेशन होगा, और इस योजना को वर्ष 1996 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
1: आधुनिक विकास यात्रा में बेतवा सांस्कृतिक जीवन की धरोहरों से सराबोर है।
2: बेतवा बुंदेलखंड की जीवन रेखा ही नहीं, सांस्कृतिक रेखा भी है।
1: बेतवा के किनारे विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ सांची है, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं शिव कुमार जीव ने।
3: सांची का निर्माण सम्राट अशोक के समय से प्रारंभ होता है। उन्हीं के महान परिश्रम से इस स्थल का उत्थान निरंतर होते रहा और वह चमन के झूले झूलता रहा। यह स्थल विंध्य पर्वत शिखर पर लगभग 300 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यह दूर से अश्व के समान दिखाई देता है। सम्राट अशोक ने यहाँ चैत्यों, तोरणों, संगारामों, विहारों आदि का निर्माण किया। सांची की शिल्पकला भगवान बुद्ध के जीवन काल की 4 विशेष घटनाओं से संबंधित है। ये घटनाएं हैं भगवान बुद्ध का जन्म, उनका बुद्धत्व, धम्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। इन गुप्तकालीन शिल्पकलाकारों ने मूर्तियों का निर्माण वास्तविकतापूर्ण ढंग से किया। सांची के मुख्य चैत्य द्वार पर रही एक विशाल एवं अप्रतिम स्तंभ है, जिसे अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। मुख्य चैत्य में सम्राट अशोक द्वारा भगवान बुद्ध के अवशेषों को स्थापित किया, तथा चैत्य नंबर 2 और 3 में भिक्खु सारिपुत्र एवं महामोग्गलायन के पवित्र अवशेषों को सुरक्षित रखा गया।
1: देशभक्ति तथा स्वाभिमान का गुण बेतवा के पानी का स्थायी अंग बन चुका है।
2: जून 1924 में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने बेतवा के तट के घने जंगलों में शरण ली थी।
1: ओरछा से सटे गांव सातार के श्री गोविंद सिंह तोमर बताते हैं।
4: भगवान दास माहौर झांसी के हैं, वो भी नेताजी हैं। इनसे उनकी मुलाकात थी, वो झांसी आए तो झांसी ने भी उनका मकान घेर लिया। जब पुलिस ने मकान घेर लिया तो ये जनानी भेज करके भागते भागते अब उन्हें का जंगल है, तो रेलवे लाइन की लेके और फिर ओरछा चले गए सीधे।
1: 12 अप्रैल 1930, जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था, उसी दिन झांसी से भी सत्याग्रह यात्रा शुरू हुई थी, और बेतवा के कछार में लोना मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून भंग किया गया था।
2: धार्मिक समभाव तथा सहिष्णुता के दृष्टिकोण से बेतवा की यात्रा अद्भुत समन्वय बिखेरती है।
1: बेतवा के ही किनारे देवगढ़ है, जो हिंदू जैन संस्कृति का अद्भुत उदाहरण है।
2: ओरछा मध्य भारत की अयोध्या है। बेतवा तट पर बसी ये पुण्य नगरी स्वयं में संस्कार तथा साहित्य संस्कृति का अपूर्व उदाहरण है।
1: यहाँ के राम राजा मंदिर के सेवक से लक्ष्मण सिंह गौर बताते हैं।
5: 1631 बिक्री में तुलसीदास जी ने रामायण जी की रचना की है। इसी दिन उसी नक्षत्र में भगवान यहाँ

0: मटकुर साहब महाराज की रानी कुंवर गणी अवधपुरी से ओरछा ले आई अवध नदी।
1: बेतवा तट पर शांडिल्य ऋषि की साधना स्थली जलालपुर है। इसी के पास रिरुआ नामक स्थान है जो जैन प्रमुख ऋषभ देव की साधना स्थली रहा है।
2: सैदनगर एक ऐसा स्थान है जहाँ कितने ही मंदिर मस्जिद आसपास बने हैं। यहाँ शंख ध्वनि के साथ पूजा आरती भी होती है, अजान भी होती है। इसे सिद्धनगर भी कहते हैं। रक्तदंता मारण मोहन की सिद्ध स्थली है सैदनगर,
1: जहाँ दुर्भाग्य से कुछ नदियाँ अपनी भौगोलिक संरचना के कारण कई समस्याएं पैदा करती हैं। वहीं बेतवा अपने उद्गम से यमुना में समागम तक 3 से 4 किलोमीटर की यात्रा में केवल प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, उत्साह और देश प्रेम बांटती है। यहाँ तक कि इसके आसपास कई समस्याओं के निदान भी खोजे गए हैं।
2: जैसे मुगावली 1977 में जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सैकड़ों डाकू ने आत्मसमर्पण किया तो उन्हें सुधारने के लिए मुंगावली की खुली जेल में रखा गया था।
1: मुंगावली जेल के सहायक जेलर श्री आर आर रॉय का कहना है,
3: देखिए मुंगावली में जो खुली जेल खोली गई इसके पीछे सन 1973 में जो चंबल के आत्मसमर्पित डाकुओं ने जयप्रकाश के सामने आत्मसमर्पण किया तो उनको समाज की मुख्य धारा में पुनः सम्मिलित करने हेतु और उनकी विशेष मांग पे उस खुली जेल की स्थापना 1973 में की गई। दूसरी जेलों में यदि उनका चाल चलन अच्छा रहा है, उनकी केस हिस्ट्री कोई वो पेशेवर हत्यारा न हो इस तरह का रहा हो तो आजकल इसी आधार पर खुली जेल में कैदी भेजे जाते हैं।
1: बेतवा का संपूर्ण क्षेत्र सस्य श्यामला की वानस्पतिक अनुभूति है। अनगिनत पेड़ पौधे, वन जंगल इसके तटों पर फैले पड़े हैं,
2: जैसे सागौन, शीशम, थौ, साज, तेंदू, महुआ, नीम, बबूल,
1: आम, जामुन, आंवला, उमर, अचार, बेर, मकोरा, बेल, नींबू और करौंदा।
2: बेतवा के उपजाऊ क्षेत्र में अमरूद, संतरा, मौसम्बी, कटहल, सीताफल, अंगूर इत्यादि भी पैदा किए जाते हैं।
1: इसकी जमीन में कच्चे होने पर खट्टे लगने वाले तथा पकने पर मीठे लगने वाले फल खासकर अच्छी पैदावार देते हैं।
2: आयुर्वेद के लिए बेतवा घाटी वरदान है। आयुर्वेद में उपयोग के लिए पौधों की लंबी लंबी श्रृंखला है।
1: अर्जुन, अशोक,
2: कचनार, अमलतास,
1: खैर, बकायन,
2: बहेला, बिलवादी जैसे बड़े वृक्षों के अलावा शंखाहुली, नागरमोथा, कष्टकारी,
1: केवंश बीज, भारंगी, गोखरू,
2: उदयफूल, नाय, इंदौस,
1: बक्की, नरगुंडी, इंद्रजौ,
2: आक, धतूरा, जवासा
1: और हरजरू, इमलौसा, फूलकर जैसे छोटे पौधे भी हैं।
2: विकास के क्रम में हमारे बीच से ये सुख धीरे धीरे घट रहा है। कभी बेतवा के पास घने जंगल थे पर अब सब क्षीण होता जा रहा है।
1: पर हाँ, उम्मीद बाकी है क्योंकि आज भी जब सिरीप, दुधी, काग, कदम की फूलने के दिन आते हैं तो बेतवा रंग और गंध से भर उठती है।
2: रंग गंध की झलक हमें ये विश्वास दिलाती है कि आज बेतवा अपने अतीत के सांस्कृतिक, कलात्मक, धार्मिक, वानस्पतिक वैभव तथा आधुनिक विकास के संक्रमण पर जहाँ खड़ी है वहां से आगे भी वो बीच का रास्ता निकाल ही लेगी। लेकिन इसके लिए हमें मंडीदीप और विदिशा में हो रहे औद्योगिक विकास से उत्पन्न संभावित खतरों को पहले जांच लेना होगा।
1: इस संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन के वरिष्ठ शोध अधिकारी डॉक्टर एस एम मिश्रा।
4: औद्योगिक प्रदूषण यहाँ पर कुछ स्थानों पर अधिक पाया गया है जिसमें एक मंडीदीप और दूसरा विदिशा है। यदि कहा जाए कि प्रदूषण की समस्या इतनी विकराल हो गई है कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, यह तो कहना असत्य होगा। लेकिन यदि हम इनमें में से इन समस्याओं से ऊपर उठ करके नदी का एकीकृत योजना शुरू से प्रारंभ से जहाँ से कि नदी अपना स्वरूप लेती है वहाँ से और अंत तक हमीरपुर में मिलने के पूर्व तक अगर पूरी योजना बनाई जाए तो शायद यह संभव है कि हम अपने इन प्रयासों के कारण इस नदी को प्रदूषण से बचा सकते हैं।
1: एक आदर्श उद्योग भी बेतवा के किनारे अपनी पृथक पहचान बनाए हुए है।
2: ये है चंदेरी का हथकरघा उद्योग।

0: देवानी हमें सूर्यकांत मणि, सुलेमानी पत्थर, गोमेदक, दूधिया पत्थर तथा बिल्लौर जैसे नगीने भी दिए हैं। हमें भी सोचना है हमारे पास क्या है बेतवा को देने के लिए।
1: भ्रम न हो न संशय, क्योंकि भ्रम अंततः ऐसी चूक में बदल जाते हैं जिन्हें ठीक कर पाना संभव नहीं होता।
0: जैसे बेतवा धसान संगम पर दस्तक हुआ था, जल भरते श्रवण को मृत के भ्रम में बाढ़ से मार डाला था।
1: इसीलिए हमें अपनी दृष्टि स्पष्ट रखनी होगी
0: और अक्षुण्य रखनी होगी। खिरी बहेड़ा से पत्योरा तक बेतवा की स्थायी संस्कृति,
1: खिरी बहेड़ा से भोजपुर,
0: रायसेन,
1: सांची,
0: विदिशा,
1: गंज बासौदा,
0: राजघाट,
1: बसई,
0: माता टीला,
1: ओरछा,
0: हमीरपुर होते हुए
1: अपने संपूर्ण क्षेत्र को तीस्ती संपन्न बनाती, सुसंस्कृत करती बेतवा अपने अभीष्ट को पत्योरा में प्राप्त करती है।

¡Arriba, Pablo!

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।

शिव पुराण का अगला खंड विद्येश्वर संहिता से है, जिसमें शिव जी की महिमा के अनेक प्रसंग हैं। इस अध्याय के अलग अलग प्रसंग हम अलग अलग प्रकरणों में सुनाएंगे। आज हम रुद्र संहिता के प्रथम खंड से कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं।

0: हे सूत जी, निर्गुण महेश्वर संसार में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं? भगवान शिव के इस तत्व को समझाइए।
1: शौनक सुनो, मैं तुम्हें ब्रह्मपुत्र महर्षि नारद की एक दिलचस्प कथा सुनाता हूँ, जो अत्यंत आनंददायी और ज्ञान को बढ़ाने वाली है। एक समय मुनिवर नारद जी हिमालय पर्वत पर तपस्या के लिए गए। हिमालय की उस एकांत कंदरा में देवर्षि नारद को शिव की तपस्या करते हुए अनेक वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या का समाचार इंद्र तक पहुंचा।
2: आहा, रंभा, मेनका, उर्वशी, तुमने अत्यंत मोहक नृत्य करके हमें मोह लिया है।
3: अरे ये हमारा सिंहासन हिल कैसे रहा है? क्या मृत्यु लोक में इंद्रासन पाने की कोई चेष्टा कर रहा है?
2: देवदूतों, तुरंत पृथ्वी पर जाओ और मालूम करो कि हमारे सिंहासन के हिलने का क्या कारण है।
4: जैसी आज्ञा देवेंद्र, चिंता की कोई बात नहीं। उर्वशी, मेनका, रंभा, नृत्य चलता रहे।
5: जो आज्ञा महेंद्र।

0: क्या समाचार है देवदूत?
1: हे देवेंद्र, समाचार मिला है कि हिमालय पर्वत की एक कंदरा में देवऋषि नारद अनेक वर्षों से कठोर तपस्या में लीन हैं। उनके तप के प्रभाव से तीनों लोकों के देवी देवता और साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्यंत प्रसन्न हैं।
0: अच्छा, कहीं उनकी इच्छा हमारे सिंहासन पर अधिकार करने की तो नहीं है? उर्वशी, रंभा, मेनका, तुम अभी पृथ्वी पर जाओ और किसी भी प्रकार महर्षि नारद का तप भंग करो। अपने साथ कामदेव को भी ले जाओ, जिससे देवऋषि नारद का मन विचलित हो जाए।
2: जैसी आज्ञा देवेंद्र,
3: हम अभी पृथ्वी लोक पर जाते हैं
2: और महर्षि नारद का तप भंग करते हैं। सखी उर्वशी, महर्षि नारद तो तपस्या में पूरी तरह खोए हुए हैं।
3: हाँ, उनका तप भंग करना कठिन जान पड़ता है।
2: चलो नर्तन करते हैं।
3: हाँ, चलो।

0: सखी, हमारे नृत्य का तो नारद पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा।
1: तो सखी, क्यों ना कामदेव से निवेदन किया जाए।
2: हाँ, ये ही उचित है।
1: हे कामदेव, हम तो असफल हो गए। कृपा करके आप अपने प्रभाव से महर्षि नारद की तपस्या में विघ्न उपस्थित कीजिए ना।
3: ठीक है, ये तो मेरे लिए अत्यंत सरल है। अरे आश्चर्य, मेरे पंच बाणों का देवर्षि नारद पर कोई प्रभाव नहीं।
1: बड़े आश्चर्य की बात है कामदेव, आपके बाणों से तो आज तक कोई नहीं बचा।
2: ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। इसमें अवश्य कोई गंभीर रहस्य है।
3: रुको, मुझे तनिक चिंतन करने दो। ओ, आप समझा, बहुत पहले भगवान शिव ने इसी आश्रम में तपस्या की थी और इसी जगह भगवान शंकर ने मुझे भस्म किया था। बाद में रति की प्रार्थना से मुझे नया जीवन मिला था। इस स्थान की महिमा के कारण यह मेरा प्रभाव क्षीण हो गया है।
1: तो अब क्या करें?
2: चलो देवराज इंद्र को जाकर सारी बात बताएं।
4: हाँ, वही कोई उपाय बताएंगे।
5: अच्छा, देवर्षि नारद की तपस्या भंग नहीं हो सकी?
3: हे देवेंद्र, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, शायद वो स्थान ही कुछ।
5: हम जानते हैं कामदेव, तुम विश्राम करो।
1: हे देवराज इंद्र, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है?
2: आपके सिंहासन की सुरक्षा के लिए।
5: चिंता की कोई बात नहीं हरंभा, क्योंकि स्पष्ट हो गया है कि महर्षि नारद इंद्रासन के लिए तपस्या नहीं कर रहे हैं।
2: हे देवेंद्र, ये जानकर हमें भी सुख मिला।
5: अप्सराओं, नृत्य आरंभ करो।

0: व्यवस्थित करने के लिए इंद्र ने कामदेव को भेजा था, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। महादेव, अब मैं भी कामार्य हुआ।
1: तात नारद, मुझे सब कुछ फली प्रकार ज्ञात है। तुम बड़े विद्वान हो, परंतु मेरी ये बात ध्यान देकर सुनो। भविष्य में कभी ऐसी बात किसी से भी ना कहना, विशेषकर भगवान विष्णु से इसकी चर्चा कदापि ना करना।
0: नारायण नारायण। हे शिव शंभु, जैसी आपकी इच्छा, किंतु मैं मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हूं। हे महादेव, मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण।
2: आइए पधारिए देवऋषि, ब्रह्मलोक में आपका स्वागत है। बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, कोई विशेष बात?
0: नारायण नारायण। हे परमपिता ब्रह्मा, आप तो जानते ही होंगे कि हिमालय की कंदराओं में घोर तपस्या के बाद आपके श्री चरणों में उपस्थित हुआ हूँ।
2: हाँ महामुनि, हमें ये भी याद है कि आप देवराज इंद्र के गर्भ को चूर करने में सक्षम सिद्ध हुए हैं। लेकिन महामुनि, ये बात आप भगवान विष्णु से कदापि ना कहिएगा।
0: हे परमपिता ब्रह्मा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
2: ये बात हम आपके भले के लिए ही कह रहे हैं, आगे जैसी आपकी इच्छा।
0: नारायण नारायण नारायण नारायण।
2: हे लक्ष्मीपति, देवऋषि नारद पधारे हैं,
3: उन्हें सादर ले आओ।
2: जो आज्ञा।
3: हे लक्ष्मी, आप जानती हैं इस समय नारद गर्भ में चूर हैं।
4: हे चक्रधर, क्या आपके मन में उनके गर्व को खंडित करने की कोई योजना है?
3: हे महादेवी, हम वही करेंगे जो उनके हित में होगा।
0: नारायण नारायण नारायण। हे देवाधिदेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम।
3: आइए देवर्षि, पधारिए। कहां कहां का भ्रमण करके आ रहे हैं?
0: कहीं विशेष नहीं भगवान विष्णु, एक लंबी तपस्या के बाद
3: शिवलोक और ब्रह्मलोक का भ्रमण करके आ रहे हैं, ठीक है ना?
0: नारायण नारायण, आप तो घट घट वासी हैं प्रभु, आपसे क्या छुपा है? आप ये भी जानते ही होंगे कि
3: हाँ, कि आपने घोर तपस्या के बल पर कामदेव को जीत लिया है। आप तो निष्ठावान हैं, ब्रह्मचारी हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकते हैं? क्यों, ठीक है ना?
0: स्वामी, जब मुझ पर आपकी कृपा है, तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है? नारायण नारायण। अब अनुमति दें प्रभु।
3: हे देवर्षि, आपका कल्याण हो।
0: नारायण नारायण
4: नारायण। हे स्वामी, सचमुच देवर्षि नारद के मन में घमंड आ गया है।
3: हाँ, हमें इसका पहले से ही अनुमान था। देवदूत,
2: आज्ञा प्रभु।
3: माया को बुलाओ।
2: जैसी आज्ञा प्रभु।
4: स्वामी, क्या माया जाल रचकर देवर्षि नारद को पाठ पढ़ाना चाहते हैं?
3: हाँ, यही एक सबसे अच्छा उपाय है।
5: मैं उपस्थित हूँ प्रभु।
3: माया, अभी अभी देवर्षि नारद पृथ्वीलोक की ओर गए हैं, उनकी राह में एक विशाल नगर की रचना करो जो वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय हो। वहां के राजा शील नीति की अत्यंत सुंदर कन्या के स्वयंवर का आयोजन करो।
5: जैसी आज्ञा प्रभु।

0: कैसा अद्भुत नगर है, लगता है स्वर्गलोक में आ गया हूँ। नारायण नारायण, यहाँ के राजा इंद्र से भी अधिक वैभवशाली लगते हैं। ये राजभवन तो जैसे मन में उत्सुकता जगा रहा है। नारायण नारायण, चलो यहाँ के राजा से मिलूं।
1: देवर्षि नारद, धन्य भाग जो आपने इस नगरी को पवित्र किया। आसन ग्रहण कीजिए प्रभु।
0: नारायण नारायण, राजन आपकी नगरी तो नववधु की तरह सजी हुई है, है? इसकी सुंदरता तो देखते ही बनती है। नारायण नारायण, ये सुकन्या कौन है?
1: ऋषिवर, ये मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। ये अपने वर को चुनने के लिए शीघ्र ही स्वयंवर में जाने वाली है।
0: राजन, आपकी ये पुत्री सारे शुभ लक्षणों से संपन्न है।
1: महर्षि, तनिक इसका भाग्य बताइए।
0: सुनो राजन, इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान होगा, वैभवशाली, किसी से पराजित न होने वाला, सारे देवताओं में श्रेष्ठ।
1: महर्षि, आपके इन वचनों से मैं धन्य हो गया।
0: राजन, मैं सत्य कह रहा हूं, इस कन्या का वरण करने वाला सारे संसार में सर्वश्रेष्ठ होगा। ऐसा कोई इस पृथ्वी पर न तो हुआ है न होगा। अब आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं।

0: नारायण नारायण।
1: अरे महामुनि नारद, आप फिर यहाँ? सब कुशल तो है ना?
2: भगवान, मैं एकांत में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए इधर आइए। हाँ कहिए महामुनि, अब अपनी बात कहिए।
2: भगवान, पृथ्वी पर राजा शील नीति की एक अत्यंत सुंदर कन्या है, उसका नाम श्रीमती है। आज ही उसका स्वयंवर है, चारों दिशाओं से वहां अनेक राजकुमार पधारे हैं। नाथ, मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ।
1: अच्छा, तो मुझसे आप क्या चाहते हैं?
2: प्रभु नारायण, प्रभु आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी मुझको वर के रूप में चुन ले। नारायण नारायण।
1: महामुनि, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं उसी तरह आपका हित साधन करूंगा जैसे एक अच्छा वैद्य किसी पीड़ित रोगी का करता है।
2: प्रभु, आपने ये बात मेरे मन के अनुकूल ही कही है, मैं तुरंत पृथ्वी लोक में जाता हूँ। आज्ञा दे प्रभु, आज्ञा दे।
1: आपका कल्याण हो।

0: नारायण नारायण। कैसा अद्भुत दृश्य है, सैकड़ों राजकुमारों के बीच वो कन्या किसको चुनेगी? निश्चय ही मुझे। मैं भगवान विष्णु का रूप जो हूँ।
1: अरे वाह, आपका स्वरूप तो दिव्य है श्रीमान। हमने आज तक संसार में ऐसा प्राणी नहीं देखा।

0: तुमने बिल्कुल ठीक कहा बंटू, देखो ना कितना तेजस्वी शरीर है और उस पर कितना अद्भुत मुख, जैसे संसार के सभी प्राणियों के स्वरूप को एक रूप दे दिया हो। कैसी दिव्य आकृति है
1: बंधु। आपका परिचय जानने की धृष्टता कर सकता हूँ?
2: भला मेरा क्या परिचय, समझिए कि बस हरि का भक्त हूँ।
0: लेकिन आप तो साक्षात हरि हैं।
1: हरि यानी बंदर?
0: नहीं नहीं, हरि यानी विष्णु।
2: क्या आप भी स्वयंवर की इच्छा से आए हैं?
1: अरे नहीं महोदय, आपके स्वरूप के सामने भला हम क्या हैं?
0: महोदय इस पूरी सभा में केवल आप ही आप हैं।
3: जी बाबा, मुझे को राजकुमारी की आ रही है, हंसी चिटोली बंद करो।
1: हाँ, गंभीर होकर बैठ जाइए।
0: अब तक कहीं इतना भी गंभीर ना हो जाना कि आंखों से आंसू ही निकल पड़े।
2: अरे राजकुमारी इधर तो आ ही नहीं रही है।
1: शायद असमंजस में है, आपकी ओर उनका ध्यान ही नहीं गया।
4: हाँ अगर आपको देख लेती तो कहीं और देखने का प्रश्न ही नहीं उठता था।
2: अरे ये कैसी जोड़ी?
1: अरे हाँ, सारा सभागार प्रकाश से भर उठा है,
4: लगता है कोई दिव्य पुरुष है। देखो
1: हाँ,
4: राजकुमारी उधर ही बढ़ रही है।
1: अरे ये क्या, वो दिव्य पुरुष तो राजकुमारी को लेकर चला गया
0: और स्वयंवर समाप्त हो गया।
1: हाँ महोदय, आपकी इच्छा तो मन की मन ही में रह गई।
0: आपके हरि स्वरूप को छोड़कर राजकुमारी किसके साथ चली गई?
1: हाँ
3: ये अनर्थ है, अन्याय है। साक्षात हरि के स्वरूप को छोड़कर राजकुमारी ने किसका वरण कर लिया?
1: श्रीमान आपने दर्पण देखा है?
0: अपना स्वरूप तो देखिए।
3: तुम मेरा परिहास कर रहे हो?
1: नहीं नहीं, परिहास नहीं श्रीमान, आभास करा रहे हैं
0: आपको, आपके स्वरूप का आभास।
3: क्या कहना चाहते हो तुम?
1: प्रभु आपके सुंदर बदन पर बंदर का मुख है।
2: बंदर का?
0: हाँ श्रीमान, इसीलिए आपका रूप असाधारण है।
3: तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, इसलिए तुम ब्राह्मण से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम दोनों का आकार राक्षस के समान होगा।
5: नारायण नारायण नारायण नारायण, ये अशोभनीय है।
6: देवर्षि देवर्षि, आप इतने कुपित क्यों हैं?
5: आप बड़े मायावी हैं। आपने आपने मुझसे कपट किया है, कपट।
6: ऐसा क्या हुआ देवर्षि?
5: आपने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया। मैं शाप देता हूँ, आपने मुझे जो रूप दिया उसी के कारण आप मनुष्य हो जाएं, स्त्री के वियोग का दुख भोगे। और जिन बंदरों के समान आपने मुझे रूप दिया है वही बंदर आपके सहायक हो। ये मेरा शाप है। नारायण नारायण।
6: हे देवर्षि, आपके इस श्राप को मैं स्वीकार करता हूँ। वास्तव में ये सब शिव शंकर का प्रताप है, उन्हीं की इच्छा से मैंने विश्व मोहिनी माया के द्वारा आपको मोहित किया था। भगवान शिव की इच्छा से अब मैं अपनी माया को समेटता हूँ।
2: अरे ये क्या, तो क्या माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था? माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, मैंने आपको श्राप दे डाला। हे प्रभु, उस श्राप को मिथ्या कर दीजिए प्रभु, उसको

0: क्या कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है प्रभु। हे विष्णु, बताइए मैं कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाए, प्रभु बताइए।
1: तात, खेद ना करो, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने महादेव की बात नहीं मानी, इसीलिए भगवान महेश्वर ने तुम्हें ऐसा फल दिया।
0: हे विष्णु, मुझे पश्चाताप हो रहा है, मुझे मुझे इस वेदना से बचाइए।
1: हे मुनि नारद, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम भगवान शंकर की स्तुति करो, उन्हीं की उपासना करो और उन्हीं का भजन करो। हे देवर्षि, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे।
0: नारायण नारायण।
2: हे शौनक, भगवान विष्णु के अंतर्धान हो जाने पर मुनिवर नारद महेश्वर के शिवलिंगों के भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे।
3: हे सूची, फिर उन दोनों पार्षदों का क्या हुआ, वे कौन थे?
2: शौनक, शिव के पार्षद उनके श्राप के कारण अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए।
3: और देवर्षि नारद ने जो भगवान विष्णु को श्राप दिया था, उसका परिणाम क्या हुआ?
2: उनके श्राप के कारण भगवान विष्णु को मनुष्य रूप में श्री राम का अवतार धारण करना पड़ा और उनके हाथों शरीर त्याग कर रावण और कुंभकर्ण को मोक्ष प्राप्त हुआ।
3: महामुनि देवर्षि नारद की कथा सुनकर मैं धन्य हुआ।
2: हे शौनक, रुद्र संहिता के अनुसार पांचवें खंड तक की ये कथा भगवान शिव के प्रताप को बताने वाली है। ये कथा मनुष्य के लिए अत्यंत कल्याणकारी है।
3: हे सूची, मेरे मन में एक जिज्ञासा है।
2: निसंकोच कहो।
3: आपने बताया कि मोह के बंधन से छूटने पर देवर्षि नारद ने पृथ्वी पर शिवलिंगों का दर्शन किया और उनकी उपासना की। शिव के लिंग स्वरूप और मूर्ति स्वरूप का रहस्य क्या है?
2: शौनक, तुमने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं, साथ ही रूपमान होने के कारण उन्हें साकार भी कहा गया है। इसलिए वे साकार और निराकार दोनों ही हैं। शिवलिंग भगवान महावीर के निराकार स्वरूप का प्रतीक है और शिव का साकार रूप उनके विक्रेय का प्रतीक है।
3: भगवान शिव से भिन्न जितने भी देवता हैं, उनकी पूजा मूर्ति रूप में ही अधिक होती है, लेकिन भगवान शिव की दोनों रूपों में पूजा करने का क्या रहस्य है?
2: शौनक, लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है जो निराकार और निरानंद है। वे सभी जगह व्याप्त हैं, किंतु उनका कोई रूप नहीं। उस परम ज्योति के परमात्म प्रकाश को ही लिंग रूप में पूजा जाता है, लेकिन त्रिदेव तीनों देवों में अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश में जो संसार के उत्पत्ति करता पालन करता और संहार करता है, भगवान शंकर का मूर्ति रूप जितना विस्मयकारी है उतना ही ज्ञानमय भी है। वास्तव में शिव के स्वरूप के प्रत्येक अंग का विवेचन भी हमें निराकार और साकार उपासना के रहस्य को भी समझाने में समर्थ हो सकता है। इसका विवेचन विस्तार से करेंगे।
4: श्रोताओं, अभी आप शिव पुराण के रुद्र संहिता के आरंभ के अध्यायों का सार सुन रहे थे।

भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज अयोध्या पधार रहे हैं। अयोध्या के सारे निवासी एक टक भगवान राम की राह देख रहे हैं। वो अखियां जो सोई नहीं जब से भगवान राम अयोध्या छोड़ के वनवास को गए, आज उन्हीं आंखों को विश्राम मिलेगा। भरत के हृदय में बड़ा आनंद है कि आज भैया आएंगे, दर्शन देंगे, इस नगरी को फिर से अपनाएंगे और इस सिंहासन का कार्यभार फिर से संभाल लेंगे। मां कौशल्या के हृदय में उमंगें उठ रही हैं कि आज मेरे राम आ रहे हैं। बस यही भाव इस भजन में है, आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

पीछे अवध के नर और नारी, रास्ता देखे महल अटारी, पूछे सिंहासन के खड़ाऊं, पूछे कौशल्या

0: गया।
1: आपके नाटकों की बातें चल रही थी, वो बात अभी थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ और मैं उस चैप्टर की तरफ जा रहा हूँ जीवन के जो बहुत सुनहरा और जज्बाती है, जहाँ आप नाटकों का प्रशिक्षण करने जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि कोई बुजुर्ग आएगा और वहाँ आता एक नवयुवक है जिसकी एक नवयुवती से मुलाकात होती है।
2: ओ, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं मैं समझ गया हूँ। तो मैं यहाँ जब आया, मुंबई वापस आ गया, मेरा सारा रिसर्च का प्रोडक्शन भी किया, रिसर्च भी किया, एग्जीबिशन लगा उसके ऊपर, मेरे रिसर्च मेथोडोलॉजी पे एग्जीबिशन लगा उसके ऊपर, हमने कुछ साउंड एंड लाइट इफेक्ट से और स्लाइड शो किया
1: जी।
2: मेरे पश्चात मैं जब दिल्ली में नहीं था तो वो एग्जीबिशन एक महीना भर चालू रहा, क्योंकि मैं मेरा काम होते ही वापस मुंबई पहुंच गया
1: जी।
2: तो वो एग्जीबिशन रतन थियम जी ने देखा, शो जो पल्स पे किया था ऑटोमेटिक डबिंग और ये करके, उस समय की जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी थी
1: जी।
2: तो उन्होंने एक डायरेक्टर को, एनएसडी डायरेक्टर जब जो भी रहे हो, शायद मोहन महर्षि थे, उन्होंने कहा कि ये अद्भुत एग्जीबिशन है और मैं इसको इम्फाल ले जाना चाहता हूं। और उन्होंने वो सब जब खत्म हो गया दिल्ली का, वो पैक करके पूरा इम्फाल में ले गए और इम्फाल में एक महीना वो सारे जो आर्टिफैक्ट्स थे, कॉस्ट्यूम्स थे, प्रॉपर्टी थी, जो हमने फोटोग्राफ्स लिए थे, उसके ब्लो अप थे, वो सारा एग्जीबिशन उन्होंने जाके मणिपुर में एक महीने के लिए लगाया।
1: वाह वाह,
2: ये भी उसका एक साइड इफेक्ट रहा। दूसरी एक बात है उससे संबंधित है, ये सब देखने के बाद, ये सारा जो काम देखने के बाद, हमारे जेएन कौशल साहब थे जो बहुत बड़े राइटर भी रहे हैं और जर्नलिस्ट भी रहे हैं और थिएटर हमारे एनएसडी के एल्यूमिनाई भी रहे हैं, उन्होंने ये सारा जो काम देखा मेरा, रिसर्च का देखा, फोटो देखी, ये देखी, वो देखी, एल्बम्स देखे, उन्होंने एक दिन अलका जी साहब से जिक्र किया कि मैंने ऐसा कोई एक अद्भुत काम देखा है और मैं चाहता हूं कि आप उसको देखिए। तो उन्होंने कहा मैं देखना चाहूंगा। तो अलका जी साहब ने कहा मैं तो उसके ऊपर किताब निकालना चाहूंगा, पब्लिश करना चाहूंगा, अगर ऐसा कोई अनयूजुअल काम है तो। खैर कुछ दिनों बाद अलका जी साहब का मुझे मैसेज उन्हीं के द्वारा कि भाई अलका जी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अलका जी साहब से मिलने का मतलब तो बहुत बड़ा सपना हो गया, कि मैं जब एनएसडी में गया तब तो अलका जी साहब वहां नहीं थे, वो तो इंग्लैंड चले गए थे या जहां भी और कहीं जगह जहां उनकी सिटीजनशिप है वहां गए थे। तो गया मैं, जब उन्होंने बुलाया तो उस समय वो सारे एल्बम तो वो एनएसडी के पास थे, वो एल्बम उन्होंने देख लिए थे और सामने रख कर बैठे थे। और जाते ही मुझे बुलाया और बोले यार क्या काम किया आपने, अद्भुत काम किया, ये क्या है, एक एक फोटो की तारीफ करते रहे और बोले मुझे इसके ऊपर किताब छापनी है। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया कि मैंने कहा यार इतनी बड़ा अपॉर्चुनिटी कि अलका जी साहब खुद उसको छापेंगे, उनकी पब्लिकेशन हाउस की तरफ से, उन्होंने उसके पहले एक ही किताब छापी थी उनकी मिसेस की थी, मिसेस अलका जी की, जो कॉस्ट्यूम के ऊपर थी और बहुत गजब की किताब छापी थी उन्होंने, और बोले मुझे दूसरी किताब ये छापनी है। तो एक तरफ ऐसा लगा कि क्या कहते मन में लड्डू फूट रहे थे, पर दूसरी तरफ ये सारा तो सारे प्रॉपर्टी तो एनएसडी की है, उन्होंने एनएसडी का ये सब खर्चा किया है। तो मैंने बड़ा डर डर से वो कहा कि सर ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन ये सारा का सारा इसके जो राइट्स है, जो मैंने थेसिस सबमिट की है, ये फोटोग्राफ सबमिट की है, ये तो एनएसडी के पास राइट है, आप उनसे बात कर लीजिए, वो परमिशन देते तो मेरे जैसा खुश नसीब आदमी नहीं होगा। खैर उन्होंने कुछ बात की और फिर उनको जवाब दिया गया कि नहीं हम खुद छाप रहे हैं, उसके लिए हमने 80,000 रुपया अलग से रखा है बजट, 1984 की बात है
1: जी।
2: तो अगर किताब छप जाती तो अब तक तो बहुत बड़ी हो जाती, पर बाद में वो हुआ नहीं, जो भी होना होता है। अब वहां से हम चल पड़े मुंबई की तरफ और यहां आ गए तो रोजी रोटी के चक्कर में एक दिन कमलाकर सोनटक्के जी, यहां पर सांस्कृतिक विभाग के संचालक थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा वामन आपको एक महीने के लिए अकोला जाना है, वहां पर हम ये कार्यशाला जो स्टेट कंपटीशन में जिनको पहले आते हैं मेडल मिलता है उनके लिए कार्यशाला करना चाहते हैं ऐसे एक्टर्स के लिए, और आप उसके लिए काबिल है मुझे पता है। तो हमने कहा चलो चल, हमें क्या काम मिल रहा है तो हम चले गए अकोला में। तो वहां के जितने भी ये सारे विद्यार्थी थे जिसमें गौरी पढ़ते ये भी विद्यार्थिनी थी, तो उनको लगा था कि भाई अब ये वर्कशॉप करने कोई आ रहा है तो बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, और जब मुझे इंट्रोड्यूस किया वहां के हमारे बड़े रंगकर्मी रहे हैं तो वहां कोई गवर्नमेंट का जो आदमी था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये भाई वामन केंद्र हैं और ये आपकी कार्यशाला लेने वाले एक महीना भर। तो कुछ लोग हंस पड़े,
1: दुबले पतले वामन
2: केंद्र बहुत सारे लंबे लंबे बाल है
1: जी,
2: हीरो टाइप या उस टाइप का हुलिया है,
1: दाढ़ी वाड़ी थी
2: थोड़ी बहुत
1: जी।
2: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है
1: जी।
2: तो कुछ लोगों ने यह तय किया, जिसमें से पहली महिला थी या विद्यार्थिनी थी, वो तब सौभाग्यवती नहीं थी
1: जी,
2: कुमारी गौरी पढ़ती थी, सरनेम था उनका। तो उन्होंने कहा कि आज का एक सेशन अटेंड करेंगे और कल से इस बच्चे से क्या सीखना है,
1: ओके
2: ये क्या सिखाएगा हमको। उद्घाटन वगैरह होना था, हो गए, सब चले गए और क्लास शुरू हो गई। और एक डेढ़ घंटे के बाद वो क्लास रुक गई। तब तक मैंने देखा कि सब हिप्नोटाइज्ड है कि क्लास की वजह से, जिस तरीके से मुझे पढ़ाने का थोड़ा बहुत तजुर्बा था, वहां केरल में भी मैंने कुछ किया था, फिर दिल्ली आके भी पढ़ाया था बच्चों के साथ, एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ मेरे रिसर्च बेस पे एक प्रोडक्शन भी किया था, जिसमें पीयूष मिश्रा जिस बैच के विद्यार्थी है उस बैच के साथ मैंने नाटक किया था, या विभा चिब्बर जो एक्ट्रेस है वो भी उस बैच की थी, या दिनेश खन्ना है उस बैच के थे, तो उसके साथ मैंने उस रिसर्च बेस पे प्रोडक्शन किया था। तो उसका भी एक तजुर्बा था थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करने का, और जो लीडरशिप या स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या करना चाहिए वो सब मालूम था
1: बिल्कुल।
2: तो इन्होंने तय किया था कि हम इंटरवल के बाद जैसे होगा उसके बाद कल से नहीं आएंगे। पर वो जिस तरीके से क्लास हो गई, जिस तरीके से वो वर्कशॉप हो गई, तो फिर उन्होंने घर जाना तो छोड़ दो। तो अंतिम दिन उन्होंने ये कहा कि हम मुंबई आना चाहते हैं।
1: ये बात
2: उसका अंदरूनी करंट पकड़ के जो पूछना चाह रहे तो, और बाद में वो गौरी पढ़ते जो थी, कुमारी थी, वो कुछ सालों बाद सौभाग्यवती गौरी वामन केंद्रे हो गई।
1: लेकिन इसमें एक बहुत दिलचस्प किस्सा मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आप उन दिनों में जब शादी नहीं हुई थी तब भी उनको भूल गए और प्रैक्टिस करने चले गए नाटक की। मतलब जीनियस लोग इतने भुलक्कड़ होते हैं।
2: क्या हो गया कि हम वो सांस्कृतिक कार्य संचालनालय में कुछ मैं काम करने गया था, और वहां से मुझे फिर शाम को रविन्द्र नाट्य मंदिर में रिहर्सल थी। तो उनको मैंने कहा कि मैं इस कार्यालय में जाता हूं, तब तक आप जहांगीर आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन वगैरह देख लीजिए, डेढ़ दो घंटे बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा, वैसे मैं आपको वहां से पिकअप करूंगा, या जैसे भी हम फिर चर्चगेट जाएंगे और सीधा रविंद्र चले जाएंगे। पर ये काम करते करते ऐसा हो गया कि मेरे रिहर्सल में देर हो रही थी, तो मैं तो चला गया कहां, रविन्द्र नाट्य मंदिर, और मैं ये भूल गया कि मुझे किसी को पिकअप करना था, या मैंने किसी को बोला है कि वहां पर खड़े रहो। तो एक दो घंटा हो गया, तीन घंटा हो गया, उसके बाद अचानक रविंद्र नाट्य मंदिर के वहां जो गेस्ट हाउस था वहां पर फोन आया कि वामन केंद्रे को बुलाइए।
1: ओके
2: तो मैं वहां पहुंचा, वो गौरी केंद्रे थी, मतलब गौरी पढ़ते थी तब। तो उन्होंने कहा सर आपने ये क्या किया। मैंने कहा क्या किया, नहीं आप मुझे बोलने वाले थे, मुझे साथ में ले जाने वाले थे, और मैंने कहा मैं भूल गया।
1: यहां एक गाने की जगह बनाते हैं,
2: क्या बात है।

0: ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि जो मैं भूलता हूँ।
1: आपकी भुलक्कड़ी के और भी किस्से हैं?
0: बहुत है। मतलब क्या है, ऐसा होता है ना, मैं जन्मदिन मुझे याद नहीं रहता।
1: हे भगवान। हाँ, अपना नहीं कि दूसरों का?
0: मुझे मेरा जन्मदिन मालूम नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जाके उसकी खोजबीन करने की कोशिश की, मेरे माताजी से, पिताजी से, मेरे दादी से, मेरे बचपन के दोस्तों से। कुछ लोगों ने मेरी एस्ट्रोलॉजी की जो साइन होती है वो निकालने की कोशिश की, पर आज तक कोई कुछ पता नहीं चल पाया। तो मेरा जो साइन है वो जो उस दिन का जो बेस्ट होता है वो मैं मान लेता हूँ, ये मेरा भविष्य है आज।
1: जो जो सबसे अच्छा है,
0: जो सबसे अच्छा है।
1: पर गौरी जी का जन्मदिन भूल चुके हैं आप?
0: हाँ, मैं कई बार भूल चुका
1: हूँ भगवान।
0: क्योंकि जन्मदिन होता है और वो सेलिब्रेट करना होता है, ये मुझे लगता है कि बहुत सालों तक हमारे संस्कार में ही नहीं था। वो दिल्ली में भी मैं था तब भी नहीं था ऐसा कुछ, वो माहौल ही नहीं होता था हमारे यहाँ। घर में कुछ होता होगा, थोड़ा बहुत टीका विका लगा के कुछ उसको आरती वरती उतारते होंगे, लेकिन ये बर्थडे मुझे लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने हमारे ऊपर लादा हुआ कार्यक्रम है। उनकी मार्केटिंग के लिए है ये। रिसेंटली बहुत पॉपुलर हो गया
1: जी।
0: तो पहले होता होगा राजा महाराजाओं का, गरीब का, श्रमिक का, किसान का, कहाँ बर्थडे होता है उसको कहाँ मालूम है। था, मेरे पिताजी चौथी क्लास पढ़े हुए थे, पर बर्थडे वगैरह मेंशन करना होता है, चविके रखना होता है, ये नहीं मालूम था। वो तो किसान है। वो जब कभी एक महीना दो महीने के बाद आपको बेटा पैदा हो गया, चलो भाई वहां के अपने पुरोहित के पास जाओ और फिर उसको पूछा कब पैदा हो गया, वो सूरज जो है ना वो कासरा भर वराला होता।
1: लो,
0: मतलब जो कासरा होता है बैलों को पकड़ने का, जकड़ने का, उसकी लंबाई है ना उतना सूरज ऊपर आया था आकाश में। मेरा जन्म तो सूरज से पहले हुआ है, सूरज उगने से पहले। तो वो सेवन स्टार होते हैं ना, सप्तर्षि, चलो उसको गांव की भाषा में तिकाट न बोलते हैं, वो तिकाट न कासरा भर वर आलेलो होता। अब वो उसको भी काम आता, ज्योग्राफी कब कितना कहाँ ऊपर आया, उसको जो लगेगा वो इंपल्सिवली उसके आपका ये जन्म नाम है और आपकी ये जन्म राशि है कुछ ऐसा कह दिया होगा
1: जी।
0: तो वो भी करना होता है, इसलिए फॉर्मेलिटी थी। इसलिए मुझे मेरा जन्मदिन नहीं मालूम है। तो स्कूल में जब कोई ले गया होगा, पिताजी ले गए होंगे, तो मास्टर जी को जो इंपल्सिवली लगा वो मेरी जन्म तारीख है।
1: वाह वाह।
0: और वो है 17 जनवरी।
1: अच्छा, वो मास्टर जी की मर्जी?
0: हाँ, मास्टर जी का पेन से जो उतरा वो मेरा जन्मदिन है।
1: गजब।
0: तो मैंने कहा वही मान लो ना, वही है, क्या मालूम है
1: जी, जी।
0: तो उसके बाद मेरे साथ इतने सारे दोस्त गांव आए जिनको एस्ट्रोलॉजी में, कि फिर उन्होंने बहुत ज्यादा पूरा गांव खंगालने की कोशिश की, घर तो खंगाल लिया, फिर उनको इससे ज्यादा कुछ पता नहीं लगा कि गुरुवार को इसका जन्म हुआ है और सूरज होने से पहले हुआ है, उषा काल के समय से पहले हुआ है, इतना ही पता लगा। अब उससे वो मेरा ये तुम्हारी ये राशि है, तुम्हारी वो राशि है, तुम्हारा फलाना है। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, उससे क्या फर्क पड़ा। तो ये है मेरे जन्मदिन की कहानी
1: जी। और गौरी जी के जन्मदिन भूलने की कहानी?
0: भूलने की कहानी तो हर साल होती है, उनको मैं बोलता हूँ एक हफ्ता पहले से बोलना शुरू करो।
1: अरे भगवान,
0: मेरा जन्मदिन आ रहा है, मेरा जन्मदिन आ रहा है। तो अब ऋत्विक देखता है ये सारा
1: जी,
0: गिफ्ट विफ्ट लाना, गिफ्ट देना माताजी को, पिताजी को, जो भी है। तो ऋत्विक उसमें बहुत, क्योंकि वो अगली जनरेशन का है तो उसको सब संस्कार है
1: जी,
0: तो उसका जन्मदिन हम सबको मालूम है।
1: हाँ।
0: जब ऑपरेशन हुआ वो कितने बजे पहला टैब बोला। तो वो सब हमने लिख के रखा, पर वो मेरे समय पे अभी कुछ नहीं मालूम है कि मेरा जन्मदिन वाकई कौन सा है।
1: जी जी जी,
0: ये किसी को भी नहीं मालूम।
1: अच्छा, जीवन का वो कौन सा पल था जब आपने तय किया कि गौरी जी आपकी जीवन संगिनी होंगी?
0: मुझे लगा कि जब वर्कशॉप खत्म होके वापस निकल रहा था और मैं अकोला के प्लेटफॉर्म में आ गया ट्रेन पकड़ने के लिए।

0: भाई की, मेरा रिजर्वेशन था, तो सारे ही बच्चे आए उन्हीं के साथ, और उसमें आधे से ज्यादा रो रहे थे, पर सबसे ज्यादा गौरी जी रो रही थी और ये कह रहे थे कि आज के दिन रुक जाइए।
1: ओके
0: तो मैंने कहा एक दिन रुकने से क्या होगा। तो मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया कि नहीं यार, इतने दिन का, महीना सवा महीने का सबका साथ है। तो सभी गांव गांव जाने वाले थे, पूरे महाराष्ट्र से आए हुए थे, बोले

0: आ रही हूँ।
1: ओहो हो, और मैं करियर करना चाहती हूँ नाटक में और आपके साथ काम करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतना सीरियसली नहीं ली बात को, पर वाकई वो जब एक दिन आके सामने खड़ी हो गई, मैं आ गई हूँ सर।
0: अरे बाप रे,
1: तो मैंने कहा ये तो धर्म संकट आ गया। पर वो अपनी बहन के पास रहती थी आयरोली में, रबा ले वहां रहती थी और वो हर दिन जाती आती थी, तो मैंने देखा साल हो गया, दो साल हो गया, वो थकती नहीं है। तो हर बार वो आती है, साथ में काम भी करती है, फिर वापस जाती है। मुझे मालूम था कि वो शादी करना चाहती हैं, वो तो हमारे दोस्त बोलते थे। तो एक दिन मैंने कहा चलो 6 जून को शादी कर लेते हैं, रैंडमली बोला 6 जून को शादी करते हैं, 7 जून को बारिश आती है तो बारिश के आगमन के साथ हमारी भी शादी हो जाएगी। ऐसे करके बोल दिया, फिर घर में बता दिया, मेरे घर में कि माताजी, पिताजी, चाचा जी लोग आ गए, भाई और एक बहन आ गई। फिर उसके घर में बोला तो उसके भी माताजी, पिताजी और उसकी बहनें तो यहाँ, लगभग 2-3 बहनें तो यहीं थी, मुंबई में थी, कुछ लोग अकोला से आ गए, तो कुल मिला के दोनों साइड से 10-12 लोग थे। देवदत्त साबले हमारे जो मित्र हैं, उन्होंने ये दोनों फैमिली को अपने गाड़ी में डाला। हमारी शादी हो गई फिल्म सिटी में,
0: अरे
1: स्टूडियो नंबर 1 में।
0: ऐसा क्यों,
1: क्या कहते हो, नोटिस देना पड़ता है 1 महीने पहले। हमने बांद्रा कोर्ट में जाके जो भी होता है उसका रजिस्ट्रेशन का 1 महीने का बोल दिया। हमारे मित्र जो एक वहां के अधिकारी थे मोपलवार, और बहुत अजीज दोस्त थे हमारे, तो उन्होंने कहा तुम्हारी शादी जब भी होगी वो मेरे घर में होगी, मतलब जहां मैं रहूंगा। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी और वो बार बार ये कह रहे थे कि नहीं तुम्हारी शादी तो मेरे यहाँ होगी, और वो फिल्म सिटी में अधिकारी थे तब। तो हमने कहा कि चलो कोर्ट में करने के बजाय, तो उन्होंने कहा कोर्ट की क्या बात करते, हम रजिस्ट्रार को यहीं बुलाएंगे। तो रजिस्ट्रार को फिल्म सिटी में बुलाने के लिए पहले जाके हम रजिस्ट्रार से मिले, तो उसने कहा कि मुझे अंधेरी से पिकअप करना होगा, अंधेरी वेस्ट में कहीं शादी है, मैं वहां जा रहा हूं, वहां से पिकअप करने आऊं। तो ये सारे बाराती तो वहां पहुंचे हैं स्टूडियो नंबर 1 में,
0: और दूल्हा,
1: हाँ दूल्हा रजिस्ट्रार को ढूंढने गया है। मेरे साथ एक मेरे मित्र विनोद पवार
0: जी,
1: जो प्रमोद पवार के भाई भी है और अपने आप में बहुत बड़े आदमी हैं, जिन्होंने झुलवा उपन्यास मुझे लाके दिया था
0: जी,
1: वो हर हम दोनों रजिस्ट्रार को ढूंढने गए और रजिस्ट्रार वहां आया ही नहीं है।
0: अरे
1: हम वहां 1 घंटा इंतजार कर रहे, 2 घंटा इंतजार कर रहे, वो शादी वाले बोले शायद वो नहीं आएंगे।
0: लो
1: अब उनको कहां ढूंढे, 2-3 घंटा हो गए हम यहीं ढूंढ रहे, इस गली में, उस गली में, ये यहाँ इस शादी में आने वाला था, इस शादी में भी आने वाला था, तो कहीं आए ही नहीं वो रजिस्ट्रार। तो अब करे तो क्या करे। अच्छा तब कोई मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन टू लैंडलाइन ऐसा कम्युनिकेशन था। तो हम दोनों ने तय कर लिया चलो यार रिक्शा में बैठो और जो वहां पहुंचे हैं बाराती वहां तो चलो, नहीं तो तब तक उनको लगेगा कि दूल्हा भाग गया। इसके मन में ही नहीं है। तो वहां वही माहौल हो गया था कि गौरी और उनके माताजी पिताजी में आपस में यही चर्चा कर रहे थे ना कि भाई वामन ने सही हाँ कहा था ना तुम्हें, क्या ये तुम्हारी अपनी मन की कुछ धारणाएं थी। तो वहां हम गए और आत्मा बंसोड़े हमारे मित्र है, वो वहां अधिकारी थे, वो भी ढूंढ रहे हैं उसको। मैंने आत्मा को फोन किया यार रजिस्ट्रार यहाँ नहीं है, वहां देखो कहीं आया हो। तो वहां पहुंचे हम, तब पता नहीं चला कि रजिस्ट्रार कहाँ है। अब शादी करे तो कैसे करे। कोई 2 मालाएं लाई थी
0: जी,
1: जो उन्होंने मोपलवार जी ने, तो वो माला एक दूसरे को पहनाएंगे तो क्या करिए। तो किसी ने बोला नहीं वो रजिस्ट्रार आया हुआ है कोई एक आदमी, अधिकारी तहसील से या जो कोर्ट से आता है वो। तब तेजाब की शूटिंग चल रही, वो वहां पर बैठा हुआ है, वो शूटिंग देख रहा है। फिर ये आत्मा बुनसुड़े गए, उसको पकड़ के स्टूडियो में लाया, फिर उसने हमारी दस्तखत कर दी।
0: वाह वाह।
1: माता पिताजी गांव से आए हुए हैं, उनको तो ढोल बाजा ढमका ढमका सब वो अपने मन में देख रहे हैं। एक तो एक आदमी आया, उसने साइन करवा लिया, उसने मेरी साइन, उसकी साइन हो गया, दफ्तर बंद किया, उसको आने जाने का पैसा दे दिया, वो निकल गया,
0: हो गई शादी।
1: 42 रुपए में हमारी शादी हो गई।
0: वाह वाह।
1: 42 रुपीज
0: जी जी,
1: वो रिकॉर्ड है दुनिया का।
0: दुनिया की सबसे सस्ती शादी।
1: सस्ती शादी। और फिर 20-25 लोग जो थे मित्र थे, श्रीराम बड़े भी थे और ये मोपलवाद की फैमिली थी, और ये सब कुल मिला के 25-30 लोग होंगे हम, तो उनके लिए उन्होंने खाने का इंतजाम किया था मोपलवार जी ने।

0: वहां पर बहुत बढ़िया ज्वार की रोटी, बेसन पिठल, झुनका खेचा और भी कुछ कुछ ऐसा खा पी के लोग अपने अपने घर चले गए। उसके बाद हम भी अपने घर चले गए। मैंने गौरी को बोला तुम अपने घर चले जाओ।
1: अरे बाप रे,
0: क्योंकि हम एक कमरे में रहते थे, माता जी पिताजी चाचा जी बहन और ये सारे लोग आ गए वहां सोने के लिए जगह का। तो बोले आप कहाँ जाओगे? मैंने कहा मेरा क्लास है साहित्य संघ में, मैं वहां जाके क्लास कर लूंगा अभी।
1: ओहो,
0: ऐसा करके वो कहीं और अपने रिश्तेदार के पास चली गई, मैं क्लास में गया। फिर शाम को कहीं हमारे एक मित्र यहाँ सांता क्रूज में रहते थे, उन्होंने कहा आप दोनों हमारे पास यहाँ आइए, हम यहाँ पार्टी देते हैं आप लोगों को। ऐसा करके हमारी शादी हो गई।
1: गजब गजब गजब, ये तो बड़ा अद्भुत किस्सा है भाई शादी का। और चूंकि आपने तेजाब की बात की तो
0: तेजाब का गाना बनता है।
1: ये गाना सुनते हैं।

उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत।

प्रभु श्री राम भरत जी को विदा कर पहुंचते हैं पंचवटी, जहां पर 14 वर्ष बिताने का निर्णय लेते हैं। तभी सूपनखा वन में घूमते घूमते प्रभु श्री राम को देख मुग्ध हो उठती है और राम से विवाह करने का प्रस्ताव कुछ इस प्रकार से रखती है।

प्रभु श्री राम सूपनखा का आत्मनिवेदन न मानते हुए अपने भाई लक्ष्मण को इशारा करते हैं और भाई लक्ष्मण अपने प्रभु राम जी का आदेश पाते ही तीर से सूपनखा की नाक काट लेते हैं। और उधर रावण के दरबार में राग रंग उत्साह जेहर देखा हर तरफ खाली वाहे वाह। इतने में रोवत उहां गैल सूपनखा आए, पड़ल रंग में भंग औ गैल सनाका छाए। और यह देख रावण अपनी बहन का हाल मारीच को समझा बुझाकर उसे स्वर्ण मृग के रूप में पंचवटी भेजते हैं।

अपमान का बदला लेवे बदे सीखौलस। बहनी के अपमान का बदला लेवे बदे सीखौलस। काना भूसी कैलस हंस के ऐसन मन।

लक्ष्मण का समझाए के राम बहुले पाँव, सीता लक्ष्मण रह गए पंचवटी के छाँव। सीता जी की मांग पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़ते हैं और प्रभु राम का तीर लगने पर मारीच राम जी की आवाज़ में हाय लक्ष्मण पुकार उठते हैं। यह सुन सीता घबरा उठती हैं और गुस्से में जानकी जी लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हुए प्रभु राम को खोजने के लिए वन की ओर भेजती हैं। उसके पश्चात साधु के वेश में रावण पंचवटी में सीता से भीख मांगने पहुंचते हैं।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

राजभवन और उसके बाहर नगर में भी उत्सव का रंग छाया हुआ है। राग रंग के उत्साह से भरे पुरवासी आते जाते दिखाई देते हैं और स्त्रियां नृत्य करती और गीत गाती दिखाई देती हैं।

0: ये आकाशवाणी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम,
1: आज प्रस्तुत है इस विशेष नाटक की छठी कड़ी।

कुंदेन्दीवर सुंदरावति बलौ विज्ञान धामा वुभौ शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृंद प्रियौ माया मानुष रूपिणौ रघुवरौ सद्धर्म वरमौ हितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्ति प्रदौ तौ हिना। सीता जी की खोज में आगे बढ़ते हुए श्री राम जी ऋष्यमूक पर्वत पहुंचे। वहां सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। महापराक्रमी

0: राम और लक्ष्मण को आते देखकर सुग्रीव पहले तो चिंतित हुए कि कहीं बाली ने ही तो इन्हें नहीं भेज दिया है। फिर विचार कर हनुमान जी को सारी स्थिति की जानकारी के लिए भेजा। हनुमान जी ब्रह्मचारी का रूप धारण कर श्री राम जी के निकट पहुंचे।
1: भद्र पुरुषों की सेवा में मेरा प्रणाम।
2: प्रणाम।
1: कूतुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनबीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हित बिचरहु बन स्वामी। कहीं आप ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीन देवताओं में से तो नहीं है, या फिर आप नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनोज अवतार।
2: वीरवर कोसलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुख मारी सुहाई। पंचवटी से किसी राक्षस ने सीता का अपहरण कर लिया है, हम दोनों उन्हें खोज रहे हैं, बस यही हमारी गाथा है। अब आप भी तो अपना परिचय दीजिए।
1: स्वामी, मेरा आपसे परिचय पूछना तो न्याय संगत था। मैंने वर्षों बाद आपको देखा है, वो भी तपस्वी के वेश में। अपनी बानरी बुद्धि के अनुसार मैं आपको पहचान नहीं सका, परंतु आप तो सर्वज्ञ हैं। फिर तुम पूछो कस नर की नाई, तब माया बस फिरहु भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीन बंधु भगवान।
2: हनुमान, हनुमान,
1: मानता हूं प्रभु मैं अवगुणों की खान हूं, किंतु आप मुझको भूल जाए। स्वामी, मैं मानता हूं हर जीव आपकी माया से मोहित है, आपकी कृपा से ही भव सागर से पार हो सकता है। फिर प्रभु मैं तो भजन उपाय कुछ भी नहीं जानता। जिस तरह पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है, उसी तरह सेवक स्वामी के भरोसे निश्चिंत रहता है।
2: हनुमान, हनुमान उठो, मेरे हृदय से लग जाओ।
3: तात, आपके नेत्रों में अश्रुकण।
2: यह अश्रुकण नहीं लक्ष्मण, यह हनुमान से मिलने का उल्लास है। अपने मन में क्लानी मत लाओ कभी, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो।
3: सब आपको समदर्शी कहते हैं, आपके लिए ना कोई प्रिय है ना प्रिय है।
2: पर मुझे सेवक प्रिय है, क्योंकि मुझको छोड़कर उनका कोई और सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत।
1: नाथ, सैल पर कपिपत रही, सो सुग्रीव दास तब आई, तेही सन्नाथ मैत्री कीजे, दीन जानी तेही अभय करीजे। सो सीता कर खोज करा इही, जहां ता मरकट कोट पठा इही।
0: इस प्रकार हनुमान ने श्री राम जी को सुग्रीव की कथा समझाई, फिर दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को इस प्रकार हनुमान के साथ आते देखा, तो अपने जन्म को धन्य समझा। मन में सोचने लगा, हे विधाता, क्या ये मुझसे स्नेह करेंगे? उनके आते ही सुग्रीव ने उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम किया। राम ने उन्हें कंठ से लगा लिया। तब हनुमान ने उन दोनों को एक दूसरे की गाथा सुनाकर अग्नि की साक्षी कर उन दोनों में मित्रता करवाई। कीनी प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाखा।
4: वानर राज, मेरे भाई महापराक्रमी राम हैं। हम दोनों अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। पिता की आज्ञा से वन में आए हैं। राम के शौर्य से संपूर्ण वन राक्षस विहीन हो चुका है। खर, दूषण, त्रिश्रा और कबन

0: जैसे महाबली राक्षस राम के हाथों मारे जा चुके हैं। इस पर खींचकर राक्षस राज रावण ने सीता जी का अपहरण किया है। हम उन्हें ही खोजते हुए यहां तक पहुंचे हैं।
1: देव, आप लोग चिंता ना करें, सीता जी आपको मिल जाएंगी। एक बार मैं यहां बैठा हुआ अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहा था। गगन पंथ देखे मैं जाता, परवस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हमें ही देख दीने पट डारी।
2: वो वस्त्र मुझे दिखाओ सुग्रीव।
1: अभी लो प्रभु, ये लीजिए प्रभु।
2: वही है, सीता के ही वस्त्र हैं।
1: प्रभु आप चिंता न करें, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। मैं वो हर संभव उपाय करूंगा जिससे सीता जी आपको मिल जाएं।
2: मुझे तुम पर विश्वास है सुग्रीव। अब एक बात बताओ सखा, तुम इस प्रकार वन में क्यों रह रहे हो?
1: स्वामी, मैं और बाली दो भाई हैं। कभी हम दोनों में ऐसा स्नेह था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बार की गाथा है, मैं दानव का महाबली पुत्र मायावी हमारे नगर में आया और आधी रात के समय ऊंचे स्वर में बाली को ललकारने लगा। बाली शत्रु की ललकार कैसे सहन कर सकता था? बाली हुंकार कर उसके पीछे भागा। मैं भी ये सब देख भाई के साथ साथ चला।
3: दुष्ट मायावी, ठहर, मैं तुझ भी तेरी ललकार का प्रत्युत्तर दूंगा।
2: सुग्रीव।
1: हाँ भैया।
2: तुम देख रहे हो, मायावी इस पर्वत की गुफा में घुस गया है। तुम मेघ पखवाड़े तक यही मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं 15 दिन तक लौट कर नहीं आ सका तो समझ लेना मेरी मृत्यु हो चुकी है।
1: भैया, ये आप क्या कह रहे हैं?
2: मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं गुफा भी जाकर इससे युद्ध करूंगा।
1: प्रभु, मैं वहां 1 मास तक रहा, तब एक दिन मैंने देखा गुफा से खून की बड़ी धारा बह निकली है। मायावी ने बाली को मार दिया है और मुझको आकर मार देगा, क्योंकि मैं बाली से अधिक बली नहीं हूं। ये सोच मैं गुफा के द्वार पर विशाल शिलाखंड लगाकर लौट आया। मंत्रियों ने राजधानी को बिना स्वामी के देखा, मेरी इच्छा ना होने पर भी उन्होंने मुझे राजा बना दिया।
2: चुप क्यों हो गए सुग्रीव, बोलते क्यों नहीं?
1: कुछ दिनों बाद बाली शत्रु को मारकर घर लौटा। आश्चर्य तो ये था प्रभु कि उसके हृदय में मेरे प्रत्येक शत्रु के समान रोष था। रिपु सम मोही मारे से अति भारी, हरि लीने से सर्वस्व अरिनारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरो बिहाला। यहां साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही।
4: सुनो सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र सरनागत गए न उपरे ही प्राण। मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है, सिद्धांत कहता है जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरिसम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कत हटी करत मिताई। अतः सखा सुग्रीव, मेरे बल पर अब तुम अपनी चिंता छोड़ दो, मैं हर प्रकार तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा।
1: देव, बाली महाबली और अत्यंत रणधीर है। देखिए, वो दुंदुभि राक्षस की अस्थियों का समूह है, ताड़ के वृक्ष है। ऐसी बात प्रचलित है कि जो इनका विनाश कर सकेगा उसी के द्वारा बालीवध होगा।
4: तो लो, मैं इन्हें एक ही बाण से नष्ट किए देता हूं।
1: आश्चर्य, एक ही बाण ने यह चमत्कार कर दिखाया। मुझको विश्वास हो गया कि आप निश्चित वाली का वध करेंगे।
4: निश्चिंत रहो सुग्रीव, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा।
1: बाली तो मेरा उपकारी है, जिसकी कृपा से दुखों का नाश करने वाले आप मुझे मिले। नहीं प्रभु, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा।

0: संपत्ति, परिवार और अहम का त्याग कर मैं आपकी सेवा करूंगा। मुझे वरदान दीजिए कि मैं सब कुछ त्याग कर दिन रात आपका भजन करूं।
1: ऐसा ही होगा, मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं होते। बाली मारा जाएगा और तुम किष्किंधापति बनोगे। उठो सखा, यह वैराग्य की वाणी छोड़ो और बाली से युद्ध करने को तत्पर हो जाओ। आओ मेरे साथ।
2: बाली, बाली, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूं। शक्ति है तो आकर मुझसे युद्ध करो।
3: आज इस सुग्रीव को क्या हो गया? कहीं भांग तो नहीं खा गया?
2: ठहर, मैं अभी तेरी खबर लेता हूं।
4: स्वामी, स्वामी, पहले मेरी एक बात सुनिए।
3: क्या है?
4: ये सुग्रीव नहीं गरज रहा, ये राम और लक्ष्मण की शक्ति गरज रही है। सुनो पति, जिन्हें मिले वो सुग्रीवा, ते तो बंधु तेज बल सीमा, कोसले सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा।
3: भीरु प्रिय, राम समदर्शी हैं, यदि वे मुझे मारेंगे तब भी मुझको परम पद प्राप्त होगा।
5: दुहाई है प्रभु, आपकी दुहाई है।
0: मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं, मेरा काल है।
1: मैं भी विवश था सुग्रीव, तुम दोनों भाई समान रूप के हो। मैं भ्रम में पड़ गया, सोचा कहीं बाली के धोखे में तुम ही ना मारे जाओ। लो, ये पुष्पमाला धारण करो ताकि मुझको तुम्हारी पहचान रहे। जाओ, निश्चिंत होकर युद्ध करो।
5: स्वामी, आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, इस पर भी आपने पेड़ की ओट में छिपकर व्याध की भांति मुझे मारा। मैं पहरी सुग्रीव प्यारा, अब कुन कभन नाथ मैं मारा।
1: अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम एचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताही बधे कछु पाप न हुई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिकावन करसी न काना, मम भुजबल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी।
5: स्वामी, स्वामी, आपसे मैं चतुराई में नहीं जी सकता। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति पाकर भी मैं पापी ही रहा।
1: सुनो बाली, मैं तुम्हारी देह को अचल करता हूं, तुम अपने प्राणों की रक्षा करो।
5: नहीं, नहीं कृपाणिधान रही, मुनिगण जन्म जन्मांतर यत्न करने पर भी जिस गति को प्राप्त नहीं होते, वो मुझको सहज में ही मिल गई है। चाहने पर भी अंत समय लोग राम नाम नहीं ले पाते, और मेरे सम्मुख तो साकार राम खड़े हैं। ऐसा संयोग क्या फिर आएगा? सो नयन गोचर जासुकुन, नित नेति कहीं श्रुति गावही, जित पवन मन गो निरस करी, मुन ध्यान कबूक पावही। मोहि जानी अति अभिमान बस, प्रभु कहू राखु शरीर ही, अस कबन सट हट काटी सुर तरु बारी कर ही बबूरही। अब नाथ करि करुणा विलो कहू, देहु जो वर मांगहु, जहि जोनि जन्मों कर्म बस, तह राम पद अनुरागहु। प्रभु, देवताओं और मनुष्यों के नाथ, ये मेरा पुत्र अंगद है। बल पराक्रम

0: विनय ने मेरे ही समान है, इसकी बाह पकड़कर आप इसे अपना दास बनाइए, इसे आश्रय दीजिए।
1: तथास्तु।

0: पिता, तुम्हारे बिना अब हमारा सहारा कौन बनेगा?
1: देवी तारा, धैर्य से काम लो। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पवन, इन्हीं पांच तत्वों से यह अथम शरीर रचा गया है। वो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है। जीव तो नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो?
2: प्रभु, मुझको अपनी परम भक्ति का वरदान दो।
1: निश्चित देवी, सखा सुग्रीव, बाली तुम्हारे अग्रस्त है, विधिवत इनका दाह संस्कार करो। और लक्ष्मण, तत्पश्चात तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव को राजपद और अंगद को युवराजपद से सुशोभित करो।
3: रघुपति की प्रेरणा से सब लोग उन्हें प्रणाम करके विदा हुए, सभी कार्य विधिवत हुए। तब लक्ष्मण जी ने सब नगरवासियों और ब्राह्मणों के समाज को बुलाकर उनके सम्मुख सुग्रीव को राज्य दिया और अंगद को युवराज बनाया। अब ग्रीष्म बीतकर वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी थी। वर्षा काल बिताने के लिए श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके।

0: ताज,
1: आज आपका मन कुछ उद्विग्न लग रहा है।
2: प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य और उसके गूढ़ रहस्य में खो गया है मन। इस वर्षा ऋतु को देखकर अनेक विचार मेरे मन में उठ रहे हैं।
1: मैं आपकी व्यथा को समझता हूँ तात। हमारे वनवास काल में जितनी बार वर्षा ऋतु आई है, जानकी जी साथ रही हैं। इस बार उनकी अनुपस्थिति आपको व्याकुल किए हुए है।
2: तुम ठीक कहते हो तात। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन दर्पत मन बोरा।
0: उधर देखो लक्ष्मण, जैसे विद्वान विद्या पाकर नम्र हो जाते हैं, उसी प्रकार बादल पृथ्वी के पास आकर बरस रहे हैं। पर्वत बूंदों के आघात को इस प्रकार सह रहे हैं जैसे संत लोग दुष्टों के वचनों को सहते हैं। छोटी छोटी नदियां किनारे तोड़कर इतराती हुई चल रही हैं जैसे क्षुद्र लोग थोड़ा सा धन पाते ही मर्यादा तोड़कर प्राण लेते हैं।

0: परम सुहावनी शरद ऋतु आ गई है, किंतु
1: किंतु क्या तात, आप चुप क्यों हो गए?
0: लक्ष्मण, अभी तक सीता के विषय में कोई समाचार नहीं मिला। एक बार कैसे भी उसका समाचार प्राप्त हो जाए तो राक्षस राज्य क्या काल को भी जीतकर मैं उसे ला सकता हूं। यदि वह कहीं भी जीवित हुई तो मैं इसे यत्न करके अवश्य लाऊंगा।
1: तात,
0: सुग्रीव हूं सुधि मौरी बिसारी, पावा राज को सुपुर नारी। जही सायक मारा मैं बाली, तही सरहतों मूड कह काली।
1: बहुत दिनों बाद आज धनुष पर बाण चढ़ाने का अवसर मिला है। मर्यादा पुरुषोत्तम, आप शुभ न हो, मैं अभी किष्किंधा जाकर सुग्रीव की बुद्धि ठिकाने लगाता हूं।
0: वहां जाकर कोई अनिष्ट न कर देना लक्ष्मण, केवल भय दिखाकर सखा सुग्रीव को यहां ले आओ।
2: जिनकी कृपा से मद और मोह छूटते हैं, ऐसे श्री राम जी को कभी स्वप्न में भी क्रोध आ सकता है? ये क्रोध तो केवल लीला मात्र है। ज्ञानी ऋषि जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति लगा रखी है, वे ही इस लीला के रहस्य को जानते हैं। इधर किष्कंधा में हनुमान मन ही मन सोचने लगे, श्री राम जी के कार्य को सुग्रीव तो भूल ही गए हैं। उन्होंने जाकर सुग्रीव को स्मरण कराया। सुग्रीव ने कहा, वास्तव में ही हनुमान, ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। विषय वासना ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया है। ऐसा करो पवन पुत्र, जहां जहां वानरों के समूह रहते हैं वहां वहां दूतों को शीघ्र भेजो और कहलवा दो कि 15 दिनों में जो नहीं आएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जह तह कपि धाए।
1: कहां है सुग्रीव, उन्हें शीघ्र बुलाओ, नहीं तो मैं पूरे नगर को जलाकर राख कर दूंगा।
3: मैं युवराज अंगद प्रणाम करता हूं देव, हम लोगों को अभिदान दें, हमारे अपराध को क्षम करें।
1: डरो मत अंगद।
4: हनुमान, हनुमान।
5: आज्ञा महाराज।
4: देवी तारा को साथ ले जाकर लक्ष्मण जी को समझाओ, उनके क्रोध को शांत करो।
6: हम उन्हें अभिभवन में लेकर आते हैं महाराज। मैं प्रणाम करती हूँ भगवान।
5: मेरा भी प्रणाम स्वीकारें देव, हमें आशीष दें।
1: मेरा आशीष सदैव आप लोगों के साथ है।
6: आइए प्रभु, राजभवन को अपने चरणों से पवित्र कीजिए।
5: मुझको अपनी भूल का पश्चाताप है देव।
1: उठो वानरराज, मेरे कंठ से लग जाओ।
5: हे नाथ, विषय के समान कोई मत नहीं है, मैं तो साधारण जीव हूं, जबकि ऋषियों तक के मन में ये मोह उत्पन्न कर देता है।
7: लक्ष्मण जी, हमने सब दिशाओं में बानर यूथ बुलाने के लिए दूत भेजे हैं।
1: ठीक है, आओ अब श्री राम जी के पास चले।
2: हरख चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जय रघुनाथ। श्री राम सुग्रीव आदि के बीच जानकी जी की खोज के लिए बातें होने लगी। यही विधि होत बत कही, आए बान रजूत, नाना बरन सकल दिसि देखिए कीस बरूत। तब सुग्रीव की आज्ञा पाकर सब बानर योद्धा जहां तहां खड़े हो गए। सुग्रीव ने उन्हें सारी बातें समझाते हुए कहा,
4: शांत हो जाओ, सब शांत होकर सुनो। वानर वीरो, सीता जी की खोज के लिए आपको यहां बुलाया गया है, यह भगवान राम का कार्य है। मेरा अनुरोध है आप सब लोग सीता जी को जाकर खोजो, इसके लिए 1 मास की अवधि है। जो बिना सुध लिए अवधि समाप्त करके लौटेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा।
8: भगवान राम की जय, भगवान राम की जय, बाना राम सुग्रीव की जय, बाना राम सुग्रीव की जय, बाना राम सुग्रीव की जय।
4: सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिली दक्ष

0: जाहू, सीता सुध पूछे सब काहू, मन क्रम वचन सो जतन विचारहू, रामचंद्र कर काज सवार।
1: यह मेरी मुद्रिका है हनुमान, यह सीता को देना, उन्हें सब प्रकार से समझाना, मेरे विरह प्रेम शक्ति सबके विषय में उन्हें बताना और शीघ्र लौटना।
2: हनुमत जन्म धन्य करी जाना, चलेउ हृदय धरि कृपा निधाना, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। श्री राम जी से आज्ञा लेकर ये वानर योद्धा सीता जी की खोज में आगे बढ़े।

0: सबने उस तपस्विनी को प्रणाम किया, अपना वृत्तांत सुनाया, उससे आज्ञा लेकर जी भर स्नान किया, वाटिका से मधुर फल तोड़ तोड़ कर खाए, थोड़ी देर आराम किया। तब तपस्विनी ने इन्हें अपनी कथा सुनाई और कहा, मैं तो अब वहां जा रही हूं जहां भगवान रामचंद्र हैं, उनसे उनकी अनपायनी भक्ति पाकर बद्रिकाश्रम चली जाऊंगी। तुम लोग इस विवर से निकलकर आंखें मूंदना, आंखें मूंदते ही सिंधु तट पहुंच जाओगे।
1: कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। अवधि समाप्त हो चुकी है और काम कुछ भी नहीं हुआ।
2: दोनों प्रकार से अब तो मृत्यु दिख रही है। इधर सीता जी का पता नहीं लग रहा, कब तक इन पनों में भटकते रहेंगे। किष्किंधा लौटे तो बानर राज हमारा वध कर देंगे। मेरा वध तो वो मेरे पिता की मृत्यु के साथ ही कर देते। भगवान श्री राम ने मेरी रक्षा कर ली। सुग्रीव का मुझ पर कोई एहसान नहीं है। अब मुझको तो अपनी मृत्यु में कोई संदेह नहीं दिख रहा।
1: सुनो युवराज, तुम्हारे कारण सभी अधीर हो रहे हैं, सभी की आंखों में पानी है। ये हम सबका निर्णय है। हम सीता जी की सूचना लिए बिना किष्किंधा नहीं लौटेंगे।
3: आओ लवण सागर के तट की ओर चलते हैं।
1: यहां कुशा बिछाकर थोड़ी देर विश्राम करें।

0: कितना जटायु का बड़ा भाई संपाती तो नहीं?
1: मेरा विचार है वही है।
2: आज सब ही कह पर जानकारा हूँ चले आहार बिन मर सब ने मिल भरी उधर आहारा आज दिन विधि एक ही बार
3: अब तो साकार मृत्यु सामने आ खड़ी हुई है।
0: इससे निपट लेंगे। सोचने की क्या बात है?
3: वास्तव में कितना जटायु के समान कोई धन्य नहीं हो सकता। ये परम भाग्यवान है जो भगवान राम की काज अपने प्राण त्याग कर परम धाम।
2: सुनो बंधु, मुझे समुद्र के तट तक ले चलो। मैं जटायु को किनारे से ले लूंगा। मैं तुम्हें सीता जी के बारे में बताऊंगा।

0: सुनो वानर वीरो, मैं और जटायु बचपन से ही महत्वाकांक्षी थे। यौवनावस्था में मैं और वो सूर्य तक पहुंचने की आकांक्षा में उड़े। सूर्य की अपार तेज को सहन न कर सकने के कारण वो तो पथ से ही लौट आया, पर मैं दम भी उड़ता ही चला गया। रवि के निकट पहुंच गया, सूर्य के अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं घोर चीत्कार के साथ धरती पर गिरा।
1: फिर
0: चंद्रमा नामक ऋषि को मुझ पर दया आ गई। उन्होंने मेरा उपचार किया, अपने ज्ञान द्वारा मेरे दंभ को नष्ट किया। उन्होंने ही मुझको बताया था कि त्रेता युग में भगवान मनुष्य का रूप धारण करेंगे। राक्षसपति उनकी पत्नी सीता का हरण करेंगे। सीता की खोज में प्रभु अपने दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तेरे दुख दूर हो जाएंगे, तेरे पंख हो जाएंगे। तू उन्हें सीता दिखा देना। आज ऋषि की वाणी सत्य हुई है।
1: सीता जी कहाँ है?
0: हाँ, देखो उधर, देखो उधर, त्रिकूट पर्वत पर लंका वसी हुई है। वहां रावण निडर होकर राज्य करता है। उसी की अशोक वाटिका में सीता जी विचार मग्न बैठी है। मैं उनको देख रहा हूँ, मैं देखा हूँ, तुम नहीं। गीधे दृष्टि अपार, बूढ़ भय उन्नत करते हूँ, कछुक सहाय तुम्हार। तुमसे जो भी शतयोजन समुद्र पार कर जाएगा, उसे ही भगवान का कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दृढ़ता से काम लो, राम को हृदय में धारण करो। देखो देखो, प्रभु कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया है, पंख उगाए हैं।

0: कायरता छोड़ लंका पहुंचने का कोई उपाय करो। अच्छा अच्छा मैं चलूंगा। बूढ़ा हो चुका हूं, अब शरीर में तरुणाई का लेश मात्र भी नहीं रहा। जब भगवान राम ने वामना अवतार लिया था तब मेरे शरीर में अपार शक्ति थी। बलि को बांधते समय प्रभु ने अपनी देह इतनी बढ़ाई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर मैंने दो घड़ी में ही दौड़कर प्रभु के उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी।
1: मैं समुद्र पार तो जा सकता हूं किंतु लौटने के बारे में मेरे मन में कुछ संदेह है।
0: तुम सब कुछ कर सकने में समर्थ हो किंतु तुम हमारे नायक हो, तुम्हें हम कैसे भेज सकते हैं? हनुमान हनुमान महाबली, तुम चुप क्यों बैठे हो? पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम्हारे लिए कठिन है, जिसे तुम नहीं कर सकते? भगवान श्री राम का कार्य पूरा करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है।
1: हनुमान जी का ये अद्भुत रूप है, लगता है जैसे साक्षात सुमेरु पर्वत हो।
2: मैं इस समुद्र को खेल खेल में ही पार कर जाऊंगा। मैं सहायकों समेत रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहां ला सकता हूं।
3: जामवंत, मैं पूछूं तोई उचित सिखावन तीन जहु मोई।
0: तुमने हम सबको उबार लिया है तात, बस तुम इतना ही करो, सीता जी को देख और उनके समाचार लेकर लौट आओ। उसके उपरांत कमल जैसे नेत्रों वाले श्री राम राक्षसों का संहार करेंगे। कौतुक के लिए वानर सेना भी साथ होगी।

सच्चन दे गल लगियां लगियां पैगी राती अंधेरी सच्चन दे गल लगियां लगियां पैगी राती अंधेरी ओ जान भी दे हुण सोहणिया।

युग पुरुष संत शिरोमणि कबीर दास जी ने कहा है, हम एक से ही अनेक हुए हैं और फिर एक ही हो जाएंगे। और जब हम सभी उस एक परमात्मा को जान लेंगे, तब हम सब भी उस एक में ही मिल जाएंगे।

और इस संसार सागर से तारने वाले सिर्फ एक है, सद्गुरु साहिब। जो ये सत्य जान जाते हैं वे भव सागर से तर जाते हैं।

साहिब तेरी साहिबी घट घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। एक माता एक

मन मक्का दिल द्वारी का काया काशी जान दस द्वारे का देहरा तामे ज्योति बिछान ईश्वर अंश जीवा विनाशी इसी में काबा इसी में काशी।

कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है बिरला जानी कोई, साधक साधे साध न पावे।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।